सिर्फ दो ईदें, तीसरी ईद चौथी ईद क्यों नहीं भाई? हिकमत है, एक राज है इसमें। ईद उल फितर रमजान के बाद है, इसलिए वल्लाहु आलम कि ईद में खुशी वो मोमिन मनाते हैं जिन्होंने रमजान में तक्वा का रास्ता अख्तियार करके अपने रब को राजी कर लिया है। लअल्लकुम तत्तकून, रोजों से मकसद क्या है, रोजा क्यों रखते हैं, रमजान का बुनियादी पैगाम क्या है? तक्वा है, मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, और जो मुत्तकी बन गए कामयाब बन गए। सुभानअल्लाह, रमजान के बाद ईद है, हज के बाद, हज के अय्याम में अरफात के दिन के बाद मैदान अरफात में अपने रब से दुआ करते हुए, क्योंकि हज में अरफात के दिन में नौज़ुल्हिज्जा को जोहर की फर्ज नमाज और असर की फर्ज नमाज जो है उनको एक साथ पढ़ा जाता है, जम्अ तकदीम कर किया जाता है, असर की नमाज को असर से पहले जोहर के साथ पढ़ा जाता है। क्यों किया जाता है, करते क्यों, सुन्नत है, लेकिन इसके पीछे एक हिकमत है कि ये हाजी जो है इस अजीम मैदान में खड़े होकर अपने सर झुका के अपने रब से दुआ मांगता रहे हाथ उठाकर। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज किया तो नमाज पढ़ने के बाद से अपने दोनों हाथ उठाए, अपनी ऊंटी पर सवार दोनों हाथ उठाए, दुआ करते रहे सूरज गुरूब होने तक। अगला दिन ईद का है, ईद के दिन खुशी मनाई जाती है क्योंकि अल हज अरफा, हज अरफात के दिन से ही होता है, अरफात का दिन छूट गया तो हज भी छूट गया, तो असल हज दो तरीकों होता है। ईद की नमाज का एहतमाम हमने करना है क्योंकि ईद की नमाज सबसे बड़ी निशानी है ईद की। हम खुशी मनाते हैं लेकिन खुशी मनाने वाले को अल्लाह ताला से डरना चाहिए। उस करीम का यह करम तो है कि उसने हमें खुशी मनाने की इजाजत तो दी है, तो खुशी मनाते हुए अपने रब को कहीं नाराज ना कर लेना। खुशी का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला इन खुशियों को मजीद दुगुना कर दे। जिस पर रब राजी होता है उसकी जिंदगी में खुशियां खुशियां होती हैं, इतना सुकून की जिंदगी होती है उसकी, खुशोखुर्रम रहता है। और जिसका रब नाराज होता है उसकी जिंदगी तंग हो जाती है। वल्लाह ना माल की कमी ना दौलत की कमी, सब कुछ मौजूद है ऐसे शख्स की जिंदगी में जिसने अपने रब को नाराज किया हुआ है। सब कुछ मौजूद है सिवाय इत्मीनान और सुकून के, दिल का सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नजर आती है लेकिन दिल का सुकून और इत्मीनान है, और उस जिंदगी में रौनक कहीं नजर नहीं आती। अल्लाह सब पे रहम फरमाए। ईद के दिन जो सबसे पहले काम करना है वो है फजर की नमाज बाजमात पढ़नी है। अक्सर लोग ईद की नमाज का तो खास एहतमाम करते हैं, अलार्म लगाते हैं ईद की नमाज के लिए जागने के लिए, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। ईद की इब्तिदा ही